श्री हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्ण हर कृष्

देह अरोगता बख्शनी, परिवार विच सुख शांति चढ़दी कला बख्शनी, आत्मक शांति लई स्वर्गवासी नीला

त्रिपवन महीप सुर नर असुर नीत नीत बन तृण कहत कर्म नाम वर्णत सुमत

वेद वेद योगते वेद नेद कह कहत है। नाचत फिरत मोर बांधर करत घोर दामनी अनेक भाव करो करत है। चंद्रमात शीतल न सूरत तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्याद ब्रह्मा से न वेदचारी सनत कुमार सी तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल भांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी।

जोगी जाति ब्रह्म विचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई कोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से मही बो दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान बुझ दंड को करत है। दारा से दिल्ली सरत रुजोधन से मान धारी भोग भोग भूमांत भूम में मिलत है। सिज दे करे अनेक तोप जी कपट भेष बोसती अनेक तानी वावत है। शीश को कहा भय मल जो पकाड़ते अनेक

फांसी डार बूढ़ जोड़ गंग धार डार डार फांस डग मार मार डार ही डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कस ज्ञान को विचार ही ताप के सहित जो पे पाई है ताप नाथ तापना अनेक तन घायल सहत है जाप के किए तो जो पे पाए तो जाप

आग देख अनु का कोट आग उठे न्यार न्यार हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है, दूर के कनु का फिर दूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए, ताहि ते उपज सब ताहि में समाएंगे। केते कछ मच केते उनको करत भच, केते अच वच हो सब पचूट जाएंगे। केते नव बीज अच पच को करेंगे वच, केते प्रत्यक्ष।

थे न जाते न पाते न सत्र न मित्र सो भूते भविखे भवान अचित्रे नरायंग नरंगंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न जोभंग भूतंग वेखंग न सत्रंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदेवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग जो नियच्छयाद।

वाकं पारयं पवित्रं पुनीतं गताकं न जातं न पातं न मित्रं न मंत्रं नमो एकतंत्र नमो एकतंत्रे न धर्मं न भर्मं न सर्मं न साके न बर्मं न चर्मं न कर्मं न बाके न सत्रं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो आदरूपे नमो आदरूपे। कहूं गंज के मंज के भरम भूले, कहूं रंग के राज के।

ग्रहं कहूं देह दुखं कहूं औखति रोग के शोक सुखं कहूं देव विद्या कहूं दैत बाने कहूं जक्ष गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी सात की तामसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतं कहूं भूमि के भुगत मैं भरम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दान भी हो कहूं जच विद्या धरे मान भी हो कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं सृष्टि के पृष्ठ के रिष्ट बनया कहूं वेद विद्या कहूं व्योम बानी कहूं कोक की काव कथा कहानी कहूं अद्र सारंग कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र बानी कहूं क्षुद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चेष्टाचार चित्रं।

न रूप न रेख रुखं जे ताप न साप न शोक सुखं जे रोग न शोक न भोग भोयं जे खेद न भेद न छेद क्षयं जे जात न पात न मात पितं जे रचयं क्षत्रि छत्र छितं जे राग न रेख न रोग भणं जे द्वैख न दाग न दुख गणं जेहे अंडह ते ब्रह्मंड रचियो दस चार करी नव खंड सचियो रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंधु रूपिंद नगिंद नगं श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रच देव देव भेव नरंग नरपाल रिपाल कराल त्रिगं कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंड जसेत ज्योत भुजंग किए देव देव सराद पितंगन खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जातन पातन ज्योत जुतंग जेह तातन मातन भ्रात सुतंग जेह रोग न शोक न भोग भुअंग जे यम पह किन्नर जच्छ जुअंग नर नार नपुंसक जाह किए गण किन्नर जाच्छ भुजंग दिए गज बाज रथादिक पांत गणंग भवोत भविख भवान तुअंग जेहे अंडज सेतज जेर रचंग रच भूम आकाश पताल जलंग रच पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली भूमेर आकाश निवास चितंग रच रोज एक

गण गंजन आदि सुरंग जे वंदत देव देव नरंग गण किन्नर जाछ भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रवान गंज वृतंग दे पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जंपत वेद पुराण सभा जय वेद कतेव अनंत कहे जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेव जपय सुत सिंध अधो मुख ताप तपय कई गल्पन लो तब ताप करे नहीं नैक कृपा नित पान पर जय फोकट धर्म सफेत तह एक चित्त कृपा निध को जप है त्यो या भव सागर कोतर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोट प्रतीम वेद उचारत सार सुती जो वारस के जस के रस है देव।

नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दा सदैव सर्वसात है। अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदैव सिद्ध वृद्ध दा। अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिय सदैव सिद्ध शुद्ध दा प्रताप पत्र जानिए। नराग रंग रूप है नरोग राग रेग है अधोग दाग दक है अभूत ब्रह्म भेक है। न तात्माद जात है न पाद चिहन वर्ण है अदेग सेग भेक है सदैव विश्वभरण है। विश्वंबर विश्वनाथ है विशेख विश्वभरण है जिमी जमान के विखे सदैव करम भरम है। अद्वेख है अभेक है अलेख नाथ जानिए सदैव सर्व ठौर में विशेख अन मानिए। न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण ओकरान नेत नेत के बतावई। न करम में न धर्म में न भरम में बताइए गंज आद देव है कहो सुकैस पाइये। जिमी जमान के विखे समस्त एक जोत है न घाट है न बाढ़ है न

न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेग है न कर्म है न धर्म है जन्म है अभेद है न तात है न मात है ख्याल खंड रूप है अछेद है अभेद है न रंग है न भूप है पर है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अभंज है।

गजादपि नरादपि करंत सेव है सदा सिद्धस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा अगस्त आदि जे बटे तपस्तवि विसेखिये बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ वेखिये अगाध आदि देव की अनाद बात मानिए न जात पात मंत्र मित्र सद

हार हार थके सबे नहीं पाई ये तह पार। नारद का अधिक वेद व्यासक मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सभ कर।

आसुरी विहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूप ते चंडासुर चंडन मुंड विहंडन धूम्र विदंशन महक मथे।

काहे को डोलत है तुमरे सद सुंदर श्री पदमा पतल है। रोगंते अर सोगंते जल जोगंते बहु भात बचावे सत्र अनेक जलावत खावत तन एक न लागन पावे। राखत है अपनो कर दय कर पाप संभूहन भेट न पावे और की बात कहा कह तो सो सो पेट ही के बट बीच बचावे। जच भुजंग सो दानव देव भेव तमें सब ही कर ध्यावे भूम आकाश पताल रसातल जच भुजंग सब सिर न्यावे। पाय सके नहीं पार प्रभाहू को नेत ही नेत भेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुम नारिक से सब हूँ मिल गायो भेद कते न भेद लखयो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाय सके नहीं पार उमा पद सिद्ध सनात सनातन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन मैज को मितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेव कुरान अभेद निर्पाण सफा बजहारे भेद न पाए सक्यो अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग।

देश फिरे कर भेस तबोधन केस धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे मोहन्यास करे मुखकारे। दीन दयाल अकाल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। त्वा प्रसाद कबित अत्र के चलैया छित छत्र के धरैया छत्र धार्यो के चलैया महासत्रन के साल है। दान के दिवैया महामान के बढ़ैया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया और विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञात महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल।

सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अक्षय अविनाशी है काम गो को निंदा है के खूबी को दिहंदा है के नियमन करिंदा है के तेज को प्रकाशी है काल हूँ के काल है के सत्रन के सार है के मित्रन को भोगत है के वृद्धता की बासी है जोग हूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के

साहिब कमाल अमृत के दाते धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज श्री दमदमा साहिब साबो की तलवंडी गुरु की काशी दे विच सतगुरु महाराज जी विराजमान हन। जदो सात संगत जी के औरंगजेब ने परवाने जारी करने कीते उन्हें सारा ऑर्डर करना कीता के गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सुतंत्र हन, कोई भी उन्हां दे नाल जंग ना करे, कोई उन्हां दे नाल लड़ाई झगड़ा ना करना करे, वह आजाद हस्ती हन, जिथे मर्जी चाहे वह आजादी दे नाल विचर सकते हैं। नाल उन्हें यह भी किया कि जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे उत्ते हमला करेगा, घाटा वाधा करेगा, उन्हें मैं सजा दवांगा, वह सरकारी बागी अखवावेगा। इस तरह सात संगत जी बहुत वड्डी ये जो जित होई, सब तो वड्डा वैरी देखो गुरु करदा जिन्हें बहुत वड्डा नुकसान करना कीता, अखीर नूं उहदी अकल जिहड़ी है जफरनामा पढ़ करके टिकाने आ गई। उन्हूं अपने गुनाहां दा गलतियां दा एहसास हो गया कि मेरे तो बहुत वड्डी गलती बहुत वड्डे गुनाह होए, ते नाल उन्हें यह भी वचन किया कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं मैं मिलना चाहुंदा हाँ। उस तो बाद सतगुरु महाराज ने भी सात संगत जी कह दिता कि खालसा जी हुण आपां ने दक्खण दे वल जाणा है, ते कईआं ने कहा कि महाराज की करना उत्थे दक्खण दे विच जा करके। भाई डाल सिंह नूं महाराज जी कहिंदे भाई डाल सिंह जी साढ़े नाल चलो दक्खण विच चलो, उत्थे जुगती मुक्ति बरता करके, क्योंकि जो अपनी शक्ति जिहड़ी है, क्योंकि मुगलिया सामराज ये पतन दे उत्ते हाशिए दे उत्ते पहुँच गया, ते नाल और जिहड़े संगठन और जिहड़ियां जथेबंदियां जिहड़े जुझारू हन उन्हां दे नाल मिल करके आपां इत्थे राजपाट स्थापित करना करिए, क्योंकि उस वेले सात संगत जी दक्षण दे विच मरहट्टिया ने, यह याद रखना चाहिए मरहट्टिया ने इन्ना ज्यादा इहदे नक विच दम कर दिता, इन्ना तंग कर दिता कि उन्हां दी मुहिम उन्हां नूं खत्म करन दे लई खुद औरंगजेब जिहड़ा है वह इस पासे आया। कारण और भी सी, एक तां शहीद सिंह भी जिहड़े हन उहनूं तंग कर रहे सन, महाराज धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी की शहादत तो बाद उत्थे रहना मुश्किल, फिर उन्हें आ बहाना लाया कि दक्षण नूं जितना, पूरा इलाका आ गया लेकिन दक्षण जिहड़ा ना इहदे वल इहनूं समर्पित नहीं होया, तां करके देखो यह इस पासे आया है। महाराज जी ने भाई डाल सिंह नूं कहा साढ़े नाल चल भाई, इहो जी वाहिगुरु जी की कला बरतेगी, तेरे सिर दे उत्ते ना राजपाट होवेगा, तेरा बहुत ज्यादा विकास होवेगा। यह कहिंदा नहीं सतगुरु महाराज की करना, मेरे लिए दमदमा साहिब ही जो है यही दिल्ली है, मेरे लिए सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज इस तो अगे की है, आई सब कुछ जेड़ा सतगुरु महाराज साढ़े लिए साड़ी खलकत है अपना घर है, इहनू छड करके महाराज असी नहीं जा सकते हाँ, कृपा करो महाराज बस आई इलाका साडा हो जावे। महाराज ने कहा भाई एक थां ते बजे ना रहो भाई, अगे वधोगे तरक्कियां करोगे, जे तरक्की करनी होवे ना तां सात संगत जी सियाणे भी कहिंदे हन एक थां ते विच आपां जे सीमित रह जांदे आ, एक भावे के किसी नौकरी दे

गुरु गरीब निवास अंतर जामे सच्चे पातशाह जी महाराज धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी आप जी के पावन स्थान सखण दरबार दादरी भरते हो आप जी कृपा बाणी का सत्कार करते हो बेअंत गुरमुखा प्यारा शब्द हेठ माया हाजिर हो सच्चे पातशाह नाम नाल सिखे दान की बख्शिश करने गुरसिखी जीवन बख्शना जी आरोपता समूह संतान दिया मनोकामनाएं पूर्ण करने नाम बाणी नाल प्यार बचना हाजरी दर प्रवान करनी यात्रा

उपजायो। आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा।

बैठा सगरे श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप से अंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सेख बार असेख संहरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणगाता जे असधुजताव शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत होए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सवटारे।

चौपई संमत सत्रह सहस भणी जय अर्ध सहस पुन तीन कही जय भाद्रो सुदी अष्टमी रविवारा तीर सतद्रो ग्रंथ सुधारा इत श्री